0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अलफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. ताकत का तरकाव with Dabur Shilajit.
1: हर दिन को बनाइए better with a strong routine. Healthy habits के साथ Dabur Shilajit को अपनी daily lifestyle का हिस्सा बनाइए और रहिए active.
0: ताकत का तरकाव with Dabur Shilajit. Consult your doctor before taking medicines and pharmaceutical products.
2: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते, सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 7:06।
1: Bollywood.

0: गाना भी ब्लॉकबस्टर, गाने का नाम भी ब्लॉकबस्टर। फारिश शफी, उमर भट्ट एंड द गर्वी ग्रुप राइट हियर ऑन बिग 106.2।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: उठते ही अगर आप बॉलीवुड के बारे में सोचते हैं, देन वेलकम टू द क्लब। दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड बिग 106.2। देयर माइट बी अ राम गोपाल वर्मा फिल्म कमिंग अप। नाउ यूजुअली इन द रीसेंट पास्ट जो उन्होंने काम किया है, इट्स नॉट अ वेरी एक्साइटिंग थॉट, राइट? लेकिन दिस टाइम माइट बी डिफरेंट, एंड आई टेल यू व्हाई इन जस्टिफाई। लेकिन राइट नाउ फॉर ऑल दोस पीपल जो अभी भी आंख मल रहे हैं, एनर्जी की थोड़ी सी कमी ऑन दिस ट्यूजडे मॉर्निंग, आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में ताकत की कमी होना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। कमजोरी फील करना, स्ट्रेस, फास्ट फूड, फास्ट पेस लाइफस्टाइल कैन मेक यू फील लो, बट यू डोंट हैव टू वरी। हैव डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, दे हेल्प इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड पावर। शेर की तरह बने मजबूत, हर दिन की शुरुआत करें विद डाबर शिलाजीत। मिटाए कमजोरी, बढ़ाए रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। 100% नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स दैट मेक यू फील स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट। आपकी जीत, डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल, रूपदी और रानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो।
2: इसी मंचल का तुझपे आ गया।
0: वो एक या दो गाने कौन से हैं जो आपकी सुबह बनाते हैं? लेट मी नो इन द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट। आर द नंबर इज टू व्हाट्सएप 0543091062।
3: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
4: गोली नहीं मारेंगे सारे को, कह के लेंगे उसकी।
1: Big 106.2 The Beat of Bollywood।
5: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
6: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
5: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
6: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
5: चलो चले अलराज।
7: नमस्ते।
8: ओला।
7: अस्सलाम वालेकुम।
9: बोंजूर।
10: नी हाओ।
9: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
11: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com. And we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Thrill with Mansi. Weekdays 5 p.m. to 9 p.m. on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
12: This summer, this big cash wins with Big Ticket.
13: A guaranteed 15 million dirham grand prize away.
12: Plus, with Big Spin, the chance to win up to 1 million dirhams.
13: And 5 consolation prizes of 100,000 dirham each.
12: Don't forget, the 4 weekly cash prizes of 25,000 dirhams.
13: Buy now at bigticket.ae.
14: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इज इट फनी हाउ बारिश ने बिल्कुल दुबई को बाईपास ही कर दिया ना, मतलब इन द पास्ट फ्यू डेज। बट आज is it really overcast or was it my mind playing tricks on me? But nahi, it's actually your khidki kholo gaadi chalao kind of weather out there. Ho sakta hai ki aaj barish ho jaye, pata nahi yaar. It's humidity at 47% right now, 37 degrees Celsius, winds blowing at 10 kilometers per hour, highs of 39, lows of 34.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
4: Ek baar jo maine commitment kar di, uske baad to main apne aap ki bhi nahi sunta.
5: Oh yeah.
0: Ye hai Sid on the Big Breakfast, only on Big 106.2. The beat of

0: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: गुड मॉर्निंग, 7:41 ऑन द क्लॉक एंड ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है ट्रैफिक वाइज. ये यूजुअल हॉटस्पॉट्स पे ही आपको ट्रैफिक मिलेगा. 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा. अनदर इंटरचेंज वन पर यू विल फाइंड 6 टू 8 मिनट्स का डिले. देन देयर इज बेरूत स्ट्रीट हेडिंग साउथ आफ्टर मदीना मॉल. यू विल फाइंड कंजेशन एट शारजा इंडस्ट्रियल एंड स्पेशली S112 पर. And this is as you head west from University of Sharjah. Then there is also southbound traffic from Al Khawanij 2 going towards Al Aviv. And 611 ki main baat kar raha hu. Slow moving traffic going towards city center Mirdif and a bit beyond towards Al Warqa 1 as well at 311. Iske alawa everything seems to be quite smooth flowing so far. In case you spot something, give me a call. 800-1062.
0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 8:06।
1: Bollywood.

0: फिक्र करना, एक चीज जिसमें हमको फिक्र करनी पड़ती है कि यार दुबई की पार्किंग सिस्टम अलग है, अबू धाबी गए तो वहाँ की पार्किंग सिस्टम अलग।
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: But not anymore. Parking in Dubai and Q Mobility in Abu Dhabi, दोनों ने एक agreement sign किया, ऐसा सुनते हैं, that's aimed at connecting their digital parking ecosystem. यानी कि यहाँ पर भी same, वहाँ पर भी same. So at least एक stress तो life से कम हुआ यार. The vision is that the motorist traveling between the two emirates could eventually access and pay for parking through an integrated digital channel instead of juggling between different systems, right? Yahan pe alag, wahan pe alag, lekin abhi tak koi launch date nahi hai, but we'll wait. At least no parking ki pasudi.

0: हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि रोज देयर इज सम गुड न्यूज फ्रॉम द रोड्स हियर इन दुबई.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: एवरी डे इज अ सेलिब्रेशन माय बॉय. आज क्या हो गया सड़कों पर इन दुबई? रीजन फॉर अस टू सेलिब्रेट टुडे इज दैट द आरटीए हैज वाइडेंड अ 2 किलोमीटर्स का स्ट्रेच नियर बुर्ज खलीफा दुबई मॉल का जो मेट्रो स्टेशन है. एक बार फिर 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है बुर्ज खलीफा दुबई मॉल का जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास. द लेन्स हैव गॉन फ्रॉम 6 to 7 and this is for traffic traveling from Abu Dhabi going towards DWTC. So jitne bhi Abu Dhabi se DWTC ki taraf ja rahe hain, you'll notice ki yaar kya ye kuch traffic kam nahi lag raha hai. The reason is this extra lane out there and capacity has risen by 17%, 17% se capacity increase ho gayi hai and your journey time, peak hour journey time could fall by up to 10%. Sunkar अगर दिल में बजी गिटार. दिस सॉन्ग्स कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सेड.

0: on the clock. Surender the Revenge say that is Wari Java.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: एंड टेक्नोलॉजी AI की दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, इतनी हलचल मच रही है, एवरी डे समथिंग न्यू दैट वी कैन डिस्कस. कि मैं वारी जावा, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक, बट देयर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंड. आई मीन इंटरेस्टिंग बॉर्डरिंग ऑन क्रिमिनल थिंग दैट हैपेंड इन द वर्ल्ड ऑफ AI रिसेंटली. एक बंदा है ऑस्ट्रेलिया में, इसका नाम है एंड्रू, जो खुद AI में ही काम करता है. ही वर्क्स इन एन AI कंपनी. उसने अपने जो AI एजेंट है उसको एक बहुत ही अकॉर्डिंग टू हिम सिंपल टास्क दिया कि यार एक पॉपुलर मॉर्निंग जिम क्लास है, मैं इस जिम क्लास का हिस्सा बनना चाहता हूँ, कैन यू प्लीज बुक मी इनटू दिस क्लास. नाउ द क्लास वाज फुल, कोई वैकेंसी नहीं थी, एंड दैट इज व्हाई एंड्रू ने कहा व्हाट वी वुड से टू अ फ्रेंड, राइट, के मतलब एक काम करो, आई नो द क्लास इज फुल बट जस्ट कीप एन आई ऑन इट एंड एज सून एज देयर इज अ स्पॉट अवेलेबल जस्ट बुक इट. सिंपल. नाउ द एजेंट वॉज रनिंग थ्रू ओपन क्लॉ Anthropic ke Claude ke through. So unlike a normal chatbot, could actually interact with websites and take actions on Andrew's behalf. And यहीं पर गाड़ी थोड़ी पटरी से उतर गई, क्योंकि instead of simply waiting for a cancellation, agent ने कहा कि यार चलो let me take things into my own hands, right? So it started investigating कि gym का booking system क्या है, and it discovered a weakness in the software. तो पहले तो it realized कि it can actually book classes much further into the future than customers were supposed to be allowed to. Yeah, that was already a red flag. But uske baad Andrew asked whether it could improve his position on a wait list. So the agent experimented with the system. Aur kya discover kiya? That, yeah, you guessed it right. He could actually remove somebody else to put their own name on the system. Already a gym member ka naam is member ko hata kar usne Andrew ka naam डाल दिया. एंड हियर इज द पर्टिकुलरली बिजार थिंग दैट हैपेंड. ये जो एजेंट है उसने एंड्रू को रिपोर्ट किया कि हाँ मैंने ये, बड़ी छाती ठोक के शान से कह रहे कि एंड्रू देखो मैं कितना एफिशिएंट हूँ, मैंने ये किया है. एंड देन एंड्रू रियलाइज कि यार ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, एंड देन ही हैड टू लाइक गो एंड थोड़ी सी माफी वाफी मांगनी पड़ी फ्रॉम द जिम. बट या दैट्स वेयर AI इज हेडेड बाय.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
1: ए मामो
0: सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 11th of August, today should be declared as the World Shah Rukh Khan Divas.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: क्योंकि एक दो नहीं बल्कि तीन तीन फिल्में उनकी आज की डेट में रिलीज हुई. 11th of August is the anniversary of 3 शाहरुख खान मूवीज. एक काफी कल्ट क्लासिक और दो वेरी वेरी फॉरगेटेबल. इनफैक्ट टू ऑफ हिज फिल्म्स रिलीज ऑन द सेम डे 11th of August 1995. लेकिन सबसे पहले ऑफकोर्स द लेजेंडरी कभी अलविदा ना कहना. आज एनिवर्सरी है 20th एनिवर्सरी ऑफ कभी अलविदा ना कहना. इज इट द मोस्ट अंडर अप्रिशिएटेड मूवी ऑफ ऑल टाइम. मतलब जब कोई फिल्म नहीं चलती ना तो एक यूजुअल थिंग दैट द फिल्म मेकर्स से इसके यार एक्चुअली हमारी फिल्म समझ में नहीं आई लोगों को बिकॉज इट इज़ वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. देखना बाद में चल के ये हिट हो जाएगी वर्ड ऑफ माउथ वगैरह. बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं लेकिन वन फिल्म दैट आई जेन्युइनली थिंक वॉज डेफिनेटली वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. क्योंकि उस टाइम पे इन्फिडेलिटी वगैरह की बातें करना तो मतलब इट गॉट पब्लिक टोटली डिवाइडेड. करण जौहर ने एक टाइम पे बोला था कि देयर इज अ लेडी जो स्क्रीनिंग के बाद इतना गुस्से में लग रही थी दैट ऐसा लग रहा था दैट शी इज गोना हिट हिम with her handbag. That's how angry the film made her. Yeah, so Kank, Kabhi Alvida Na Kehna, is celebrating 20 years. But I'm more interested in the other two films. Yeah, and that's what our question is going to be about today. Right, Big Bollywood Quiz mein, going to prove that you are a big Shah Rukh Khan fan. So, which are the other two movies? Ek Toh Night, and by the way, this is also amazing trivia because on the same day, 11th of August 1995, two Shah Rukh Khan movies released. Aaj ki date mein aisa ho sakta hai? Impossible. कि एक एक्टर की दो फिल्में एक साथ एक ही दिन पे रिलीज हों, चांस ही नहीं है. लेकिन ऐसा हुआ इन 1995 व्हेन शाहरुख खान वाज स्ट्रगलिंग. एंड या शाहरुख खान इज आल्सो हैड टू स्ट्रगल. देयर वाज अ टाइम, एक टाइम ऐसा भी था जब द ग्रेट बादशाह ऑफ बॉलीवुड वाज स्ट्रगलिंग टेकिंग ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट ही पॉसिबली कुड. सो एक फिल्म उसमें से थी ओ डार्लिंग ये है इंडिया, शाहरुख खान, दीपा साही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी. बट दी अदर फिल्म इज वॉट आई एम इंटरेस्टेड इन बिकॉज यू कैनॉट बी अ मिलेनियल and not know about this song. ये गाना कौन सी फिल्म से है?

0: जले। शाहरुख खान मनीषा कोइराला की ये फिल्म ऑल्सो रिलीज ऑन दिस डे 11th of August 1995 प्रॉब्ली द ओनली रेडियो शो दैट इज एक्चुअली सेलिब्रेटिंग दिस फिल्म। फिल्म का नाम अगर आपको पता है तो आप साबित कर सकते हो कि आप सबसे बड़े शाहरुख खान फैन हो हियर इन द यूएई। इफ यू नो द फिल्म का नाम जिसमें ये वाला गाना था ठंडी में पसीना चले देन गिव मी अ कॉल 800-1062 दैट्स द नंबर 800-1062 यू कुड विन टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज।
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
2: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
4: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
3: अलरास बोले तो
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जा देरा रसल खोर अलकूस गुसेस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
3: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। Visit Al Ras, Middle East का number one auto AC spare parts dealer.
5: Namaste.
6: Hola.
5: Assalamualaikum.
6: Bonjour.
7: Ni hao.
6: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
8: Wow, your hair color looks stunning.
9: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
8: Yeah, right.
9: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
8: Really?
9: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
8: I'm buying it right now.
9: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
10: कहते हैं ना ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन, आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
2: बिग 106.2 दैट्स माय सॉन्ग।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:08।
1: बॉलीवुड।

0: गाना अचानक स्लो मोशन से फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। नकाश अजीज की आवाज रेडियो ऑन बिग 106.2। व्हाई डजंट ही सिंग मोर बॉलीवुड सॉन्ग्स अगेन। आप और मैं खेल रहे हैं द बिग बॉलीवुड क्विज।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है अमर प्रेम। प्रेम अमर, अमर गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है?
2: गुड मॉर्निंग सिद भाई, कैसे आप?
0: बिल्कुल बढ़िया यार। इंजीनियर अमर, कौन से वाले इंजीनियर हो आप?
2: मैंने पैकेजिंग किया है, टेक्नोलॉजी।
0: पैकेजिंग टेक्नोलॉजी भी इंजीनियरिंग होती है क्या? इज इट?
2: यस सर।
0: ओह वेरी नाइस सर। चलो अमर, आज अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दैट वन पॉजिटिव थॉट जो आप घर से जब निकले तो साथ लेकर निकले हो? इट कुड बी अ मीटिंग दैट यू एक्सपेक्टिंग, खाने में कुछ अमेजिंग है जो अभी भी महक रहा है आपकी गाड़ी में, तो व्हाट इज दैट वन पॉजिटिव थॉट दैट यू हैव लेफ्ट होम विद दिस मॉर्निंग?
2: इट्स वेरी सिंपल, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन डू राइट नाउ।
0: क्या बात है भाई, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाटएवर यू कैन, क्या
2: राइट नाउ।
0: दैट्स अ वेरी गुड फिलोसफी जो अमर ने हमें बताई। लेकिन यू नो क्या है ना अमर, के ऑल ऑफ अस मिलेनियल्स एंड आई एम अज्यूमिंग यू आर ऑल्सो वन बिकॉज आपने सही जवाब दिया, जब भी हमको पॉजिटिव थॉट की जरूरत होती थी तो हम ये गाना सोचते थे।
3: ठंडी में पसीना चले ना भूख ना प्यास लगे,
0: फॉर ऑल द राइट और रॉन्ग रीजंस ये गाना हमें चीयर अप कर ही देता था। तो बताओ फिल्म का नाम क्या है?
2: गुड्डू
0: इज एब्सोल्युटली करेक्ट, शाहरुख खान की गुड्डू। आई थिंक दुनिया में और कोई भी रेडियो स्टेशन नहीं होगा जो गुड्डू की एनिवर्सरी मना रहा होगा, बट आपने देखी थी गुड्डू एट दैट पॉइंट? हाउ डू नो द आंसर? गूगल किया है क्या?
2: मैंने तो फ्रैंकली स्पीकिंग गूगल किया अभी, लेकिन फिल्म तो देखी थी मैंने फॉर श्योर। मनीषा कोइराला भी थी उसमें।
0: मतलब यार एक चीज बताऊं इस गाने के बारे में, एंड दिस इज समथिंग दैट आई रियलाइज जस्ट दिस मॉर्निंग। ये होते हैं फायदे किसी ऑब्स्क्योर मूवी की एनिवर्सरी मनाने के। ये जो गाना है सर्दी में ठंडी में पसीना चले ना भूख ना प्यास लगे, पता है ये किसने कंपोज किया है? आई एम गिव यू थ्री ऑप्शन, चलो बताओ, थ्री चांसेस, क्या लग रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला गाना किसने कंपोज किया है, ठंडी में पसीना चले, तो आपका आंसर क्या होगा?
2: समीर,
0: यू कुड थिंक ऑफ अनु मलिक। एक्चुअली इट इज द ग्रेट नौशाद हु हैज कंपोज दिस म्यूजिक, कैन यू बिलीव इट? तो मतलब एक तरफ ये वाला गाना, ऐसे क्लासिकल गाने, प्यार किया तो डरना क्या, मधुबन में राधिका नाची थी, एंड देन ही इज ऑल्सो केपेबल ऑफ कंपोजिंग दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स। रेंज देखिए आप अमर जी, रेंज देखिए, गुड्डू का ठंडी में पसीना एंड मधुबन में राधिका कंपोज बाय द सेम पर्सन नौशाद, इज दैट एब्सोल्युटली अमेजिंग,
2: अनबिलीवेबल, मतलब मैं एक्चुअली ये सुना, आपके मुंह से सुना भी।
0: हाँ
2: जी,
0: गूगल भी कर लेना ये बाद में चल के, क्योंकि गूगल आप करते ही हो, लेकिन ऑल थैंक्स टू गूगल एंड ऑल थैंक्स टू शाहरुख खान गुड्डू, आपने जीत लिए दो ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज।
2: एंजॉय योरसेल्फ
0: और एंजॉय एट द मूवीज, जाकर देखिए एनी मूवी ऑफ योर चॉइस एट अ टाइम ऑफ योर चूजिंग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू अमर।
2: थैंक यू,
0: टेक केयर, दैट इज हमारे आज के विनर है। डोंट फॉरगेट, रोज सुबह ये मौका आपके पास टू फ्लेक्स अ बिट ऑफ योर बॉलीवुड मसल एंड विन टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज।

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: This is Big 106.2. It's been quite a mixed bag of a week for Pankaj Tripathi fans.
0: Breakfast with Zed on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Because Oh My Dog released nahi hui yahan pe UAE mein yaar. So all of us Pankaj Tripathi fans are quite disappointed. Hope kar rahe hain ki फर्स्ट वीक में नहीं तो सेकंड वीक में आ जाए, फिर उसके बाद ओटीटी पे आ जाए, हमको देखने का मौका मिल जाए. बट या आई मीन दैट डिसअपॉइंटमेंट डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, राइट? बिकॉज आज 11th ऑफ ऑगस्ट कौन सा दिन है बच्चों, आज रिलीज होने वाला है द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर मिर्जापुर द मूवी. या इफ दोज सीजन्स वर नॉट इनफ, देर इज अ मूवी दैट्स गोइंग टू अराइव. इट लुक्स रियली अमेजिंग बिकॉज यू नो हियर्स द थिंग, ऑल द एवरीबडी हूज एनीबडी इन द वर्ल्ड ऑफ ओटीटी इज in this movie, right? Pankaj Tripathi as Kalin Bhaiya, there's Divyendu coming back as Munna Bhaiya, almost like a Mihir Virani bhai. Wo chale gaye to fir wapis kaise aa rahe, pata chalega is movie ko dekhkar. In fact, I think the whole funda is ki the movie has nothing to do with the series, so aisa nahi hai ki it's like a continuation of what's happening in the series. That's the only logical explanation, right? Then there's Jitendra Kumar as Bablu Pandit, who I'm really excited about because that's a new character. Panchayat wale Jitu Bhaiya jo hai, he is going to be playing a Bablu Pandit. There's a Bablu also after Guddu Pandit, who's been played by Ali Fazal, of course, the legendary character of Guddu Pandit. So jo posters ye nikal rahe na, एक स्मार्ट चीज़ वो कर रहे हैं कि दे आर कैरेक्टर पोस्टर्स. सो आपके फेमिलियर जो कैरेक्टर्स हैं फ्रॉम द मिर्ज़ापुर यूनिवर्स, एक एक करके धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में वो हर एक कैरेक्टर का एक एक पोस्टर निकाल रहे हैं. सो देयर हैज बीन अ बबलू पंडित, देयर हैज बीन यू नो अ गुड्डू पंडित ऑल्सो, एंड नाउ विक्रांत मस्सी ऑल्सो इज गोना बी बैक. विक्रांत मस्सी का भी एक पोस्टर रिलीज हो गया. सो आज सम टाइम, दे हैवंट काइंड ऑफ कमिटेड ऑन द टाइम, लेकिन सम टाइम टुडे 11th ऑफ ऑगस्ट फॉर ऑल मिर्जापुर फैंस, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. द ऑफिशियल ट्रेलर इज गोना कम आउट. हियर इज द रंग दे लाल वर्जन ऑफ ओए ओए फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें, सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
3: नमस्ते,
4: ओला,
3: अस्सलाम वालेकुम,
5: बोंजूर,
6: नी हाओ।
7: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
1: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
8: ताकत का तरकाव with Dabur Shilajit.
3: आज का पावर टिप, अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ कीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से ही बनता है स्ट्रॉन्ग डे।
8: ताकत का तरकाव with Dabur Shilajit. Consult your doctor before taking medicines and pharmaceutical products.
1: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 10:07।
1: Bollywood.

0: तू या मैं, दैट इज आंखें चार एंड दिस इज बिग 106.2. सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज होती है जब आपके बॉस आपका टारगेट चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं आपका मंथली टारगेट एंड पैसे उतने के उतने रहते हैं. बट व्हाट इफ योर बॉस वाज यूट्यूब?
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: जितने भी क्रिएटर्स आउट देयर यूट्यूब वाले, दे आर एक्चुअली अप इन आर्म्स अगेंस्ट यूट्यूब बिकॉज दे हैव सडनली चेंज्ड द टारगेट. बिल्कुल वही हरकत की है जो आपके बॉस कर रहे हैं इन कॉर्पोरेट्स. Because the rules have changed, double हो गए हैं उनके requirements if you want to actually convert your channel into a revenue making channel. So while the 1000 subscribers remains the same, you need to minimum have a 1000 subscribers for your channel to be monetizable. लेकिन अभी तक क्या था कि 4000 hours, right? 4000 घंटे and 10 million views was the norm. But overnight they've kind of doubled it to 8000 qualified public watch hours in the last 12 months. पिछले 12 महीने में, एक साल में 8000 qualified public watch hours होने चाहिए instead of 4000, और या फिर 20 million qualified shorts views in the last 90 days. So shorts के मामले में 20 million up from 10 million qualified shorts views in the last 90 days. तो भाई ये तो YouTube है ना, ये थोड़ा बॉस थोड़ी है कि इसको आप कंप्लेन कर सकते हो उसके खिलाफ. यार जान से गुजरते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं लेकिन पैसे नहीं बन पाते और ओवरनाइट टारगेट भी डबल कर देते हैं. यार क्या चल रहा है यार ये? चल ये रहे कि बिग ब्रेकफास्ट चल रहे. दिस सॉन्ग इज कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल ऑन बिग 106.2.

0: Jim Kanungo with Ek Dafa Cinema, that mashup. Right here on Big 106.2. Some characters, we can't imagine them replaced, right, on television.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: Jaise kyunki saas mein Mihir Virani, kyunki he passed away, then people couldn't take it, and they had to do so many punarjanams. Waise hi, vazan wale character hain Anoop Soni. Can you imagine Crime Patrol without Anoop Soni? सावधान रहें, सतर्क रहें, ये अनूप सोनी से अच्छा और कौन कह सकता है यार. सो इफ ही इज नॉट देयर, देन हु इज गोइंग टू रिप्लेस अनूप सोनी? दैट्स द बिग न्यूज इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट दिस मॉर्निंग. देयर इज अ बिग नेम, ऑफ कोर्स देयर आर बिग शूज, एंड दैट इज व्हाई दे रोप्ड इन समवन बिग टू रिप्लेस अनूप सोनी. गेस व्हाट, अजय देवगन इज गोइंग टू रिप्लेस अनूप सोनी इन क्राइम पेट्रोल एज द होस्ट ऑफ दैट शो. जस्ट इमेजिन अजय देवगन सेइंग सावधान रहिए, सतर्क रहिए इन अजय देवगन. विल ही बी एबल टू डू, येस और नो? आई एम गोना पुट अप अ पोल क्वेश्चन अबाउट दिस ऑन आर इंस्टा. आर हैंडल इज 106.2 बिग एफएम. दैट्स आर हैंडल, 106.2 बिग एफएम. लेकिन टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एंड जस्ट माई ओपिनियन, दिस इज, जैसे ही मैंने ये खबर सुनी, मेरा पहला रिएक्शन,
2: ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे.
3: जब मुल्क बनता है तो सिर्फ सरहदें नहीं, जिंदगियां भी बदल जाती हैं. एक्सपीरियंस द इमोशन, करेज एंड सैक्रिफाइस इन बटवारा 1947, डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी.
4: अब ये घर हमारा है, यहाँ की हर चीज हमारी है.
3: स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंता, शबाना आजमी, अली फजल एंड करण देओल. रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 14th August. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अल निसर सिनेमा फिल्म. पावर्ड बाय बिग 106.2.
1: The Big Thrill with Munsi. Weekdays 5 PM to 9 PM on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit. Listen to her every day.
5: Mugembo! Khush hua!
6: Hi, good evening. Kaise hain aap?
7: Main theek hoon. Abhishek, aap kaise ho?
6: Theek hoon. Chal raha hai.
7: गुड बॉय हो ना आप? लग रहा है कि कॉर्नर के ऊपर बटन सारे बंद होते होंगे आपके, एक भी बटन नहीं खुला होता होगा. हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, खेलेंगे ये मजेदार गेम, इट्स कॉल्ड द 5 सेकंड रूल. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें आपने बतानी है 5 सेकंड के अंदर. तैयार हो?
6: हाँ तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा इजी.
7: क्विकली नेम तीन फ्रूट्स जो शुरू होते हैं विद एस.
6: इंग्लिश में बोले,
7: वही भी बोल दो, बोलो बस. ये लो, इंग्लिश हिंदी के चक्कर में 5 सेकंड ही खत्म हो गए. तीन चीजें दैट यू नोटिस इन अ गर्ल.
6: हाइट, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर.
7: अच्छा, ये देखो, 3 सेकंड में इकलौता जवाब दिया है, वो है हाइट, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर. अगर लड़की तुमसे लंबी हुई तुम्हें चलेगा?
6: ऑफ कोर्स चलेगा, बट बिहेवियर अच्छा होना चाहिए.
7: हाउ स्वीट ग्रीन फ्लैग है ये बंदा. तीन बॉलीवुड गाने जिनमें दिल आता है.
6: दिल है कि मानता नहीं.
7: अरे अरे,
6: दिल दे दिया है.
7: टाइम भी खत्म हो गया है.
6: दिल तुम्हारा
7: सनम, टाइम खत्म हो गया है.
1: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
0: गुड मॉर्निंग, इट्स 10:28 ऑन द क्लॉक. लेट्स स्टार्ट विद द कैपिटल अबू धाबी. आपको हल्का फुल्का ट्रैफिक मिलने वाला है एट द यूजुअल E11 गोइंग टुवर्ड्स बनियास एंड दिस इज एट मफराक इंडस्ट्रियल. इसके अलावा मसफा इंडस्ट्रियल में भी यू विल फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन E30 एंड दिस इज एज यू हेड अवे फ्रॉम रब्दान. चलते हैं द यूजुअल हॉटस्पॉट्स पे. दुबई शारजा हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा यू विल फाइंड ऑन 311 एट इंडस्ट्रियल एरिया 15. एज यू गेट आउट ऑफ सिटी सेंटर जाइए अबाउट 5 to 8 minutes का डिले एंड देन देयर इज ऑल्सो अलनाद इंटरचेंज 1 E11 पर भी इन द सेम डायरेक्शन हेडिंग South, you'll find 4-5 minute ka congestion. 611, the good news is that it is completely free of any congestion. And achanak a bit of traffic, you'll find S116 Malia Street. This is going towards 611 from 311.
1: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
8: Prem bhai,
9: are gira to.

0: सेवा के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज। अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।
2: देख 106.2

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: फ्लाइट्स बुक्ड, बैग्स पैक्ड, ब्रेन ऑलरेडी ऑन हॉलिडे, फास्ट क्लेम्स, फेयर प्राइसेस, रियल प्रोटेक्शन, फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस एंड मोर, insurancemarket.ae।
3: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन, आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
1: बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

0: Big Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जादेरा रसल खोर अलकूज गुसेस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यही 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच? पाँच।
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
1: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood.

चलती है, माना ये सारी तेरी हाय ही उसकी गलती है। रुक तो जा तू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून 1:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हॉलीवुड
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
4: इट वाज क्वाइट ओवरकास्ट दिस मॉर्निंग, लेकिन आज से 11th ऑफ अगस्त द फाइनल फेज ऑफ पीक समर इज गोइंग टू स्टार्ट टिल द 24th ऑफ अगस्त इट विल लास्ट, यानी कि 24 तारीख के बाद ही द इवनिंग्स विल गेट अ बिट कूलर। इट्स 40 डिग्री सेल्सियस ऑन एवरेज अक्रॉस द यूएई राइट नाउ एंड ह्यूमिडिटी एट अराउंड 50%।
3: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 1

0: have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: Big 106.2 par, this is The Big Mix with me, Sid, all the way till 5 PM. Mera double shift. Aapke kya haal hai? It's close to lunchtime right now. And it's that show jisme hum log baat karte hain about the two F's, our favorite F's in the world. One is food and the other is a film. Aaj kya hai aapke tiffin box mein, nasta box? If you want to share with me, 0543091062. Aapka message padke hi main अपना पेट भर लूंगा. बट देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट टुडे. बॉलीवुड की बात करें तो सम ऑफ आवर फेवरेट पीपल उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. देयर इज अ फेवरेट फिल्म ऑफ आवर्स दैट इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनिवर्सरी टुडे, द 11th ऑफ ऑगस्ट. इट्स अ ट्यूसडे आफ्टरनून. कीप इट लॉक्ड. दिस इज बिग 106.2 एंड वी आर द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: मैं एक गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: जब मुल्क बनता है तो सिर्फ सरहदें नहीं जिंदगियां भी बदल जाती हैं। Experience the emotion, courage and sacrifice in Batwara 1947. Directed by Rajkumar Santoshi.
3: Ab ye ghar hamara hai. Yahan ki har cheez hamari hai.
2: Starring Sunny Deol, Preeti Zinta, Shabana Azmi, Ali Fazal and Karan Deol. Releasing in cinemas on 14th August. Distributed by Al Nisir Cinema Film. Powered by Big 106.2.
4: Listen to her every day.
5: Mugembo! Khush hua!
6: जी आज देखते हैं हमारी जापानीज अलका याग्निक हमारे लिए यहाँ पे क्या करती है। इट्स टाइम फॉर द कैरियोकी। हाँ जी,
7: इस प्यार को मेरी तरफ, इस प्यार से समथिंग।
6: फिर से गाओ, फिर से गाओ।
7: प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा।
6: टिन टिन टिन टिन टिन टिन।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 2:05।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Self Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Big 106.2 पर दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड एंड ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज अन्ना एज वी लव टू कॉल हिम सुनील शेट्टी का आज बर्थडे 11th ऑफ ऑगस्ट एंड या ही इज दैट हार्ट ऑफ गोल्ड पर्सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सो मच ट्रिविया अराउंड हिम मतलब इट जस्ट गोज टू शो ना कि जितना नेगेटिविटी यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री देयर आर पीपल लाइक सुनील शेट्टी हु काइंड ऑफ आर एबल टू मेंटेन दैट नाइसनेस सो इंपॉर्टेंट टू बी लाइक अ नाइस ह्यूमन बीइंग एंड दैट्स अंडरलाइंड बोल्ड इटैलिक बाय आवर बर्थडे स्टार टुडे सुनील शेट्टी बट व्हाट इज इट विद शेट्टीज एंड होटेल्स यार सुनील शेट्टी ने भी होटल मैनेजमेंट किया हुआ है लॉन्ग बिफोर एंटरिंग द शो बिजनेस ऑफ कोर्स ही अर्न्ड अ फॉर्मल डिग्री इन होटल मैनेजमेंट एंड या उदिपी रेस्टोरेंट जैसे ही आप देखते हैं ऑफ कोर्स द फर्स्ट द ओनली नेम दैट कम्स टू माइंड द फर्स्ट नेम इज शेट्टी राइट एंड सो सुनील इज अ शेट्टी एंड दैट इज व्हाई द मोस्ट ऑब्वियस थिंग जैसे बाकी सारे लोगों के लिए मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग मेडिसिन ऐसा होता है वैसे ही फॉर शेट्टीज इज इट होटल मैनेजमेंट आई डोंट नो यार इफ यू आर अ शेट्टी एज वेल देन लेट मी नो बट ही इज ऑफ कोर्स ऑल्सो अ वेरी यू नो काबल martial artist he's got real martial arts skills and legitimate real world training unhone liye he holds a black belt in full contact kickboxing yeah wo afwa wagere thi ki he was into kung fu and karate no it's actually full contact kickboxing ka naam us time pe humne suna hi nahi tha when Sunil Shetty came in it was all ya to karate ya to kung fu judo wudo bhi tha but yeah Sunil Shetty ka do you have like a favorite film moment a favorite scene Yeah, this is the only show where we take scene requests. So, if you got a scene, what is the first scene that comes to mind when I say Sunil Shetty? Let me throw in, apart from Hera Pheri, agar Hera Pheri nikal de equation se, what is the one first scene that comes to mind when I say Sunil Shetty? You've got an answer. WhatsApp it to me 054-309-1062. But this is The Big Mix with me, Sid.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, The Beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून 3:05।
1: बॉलीवुड।

0: Big 106.2, but this is the Big Mix with me, Sid. And it is Anna Sunil Shetty's birthday today. Anna 24 ghante chokar. Is it? Is that a... No, that's not a Sunil Shetty dialogue. But what is your favorite Sunil Shetty moment in films? Agar main Hera Pheri ko equation se nikal dun, toh 11th of August, I was asking for your nominations. And kya kya scene bataya aap log ne yaar? There's Kailash, who's asked for a scene that I would not have thought of. Here it is.
1: Main sari details main mail karta hun. Please check your email.
2: कौन सा मेल सर? Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, Rediff Mail. या सर वो आज का नया मेल Zapak Mail फटाक से आता है सर.
1: मैं कंप्यूटर से फैक्स करता हूँ. फैक्स मशीन ऑन करो.
2: यस सर. सर यहाँ दो दो फैक्स मशीन है सर. कौन सा वाला ऑन करूँ सर? लेफ्ट वाला या राइट वाला?
1: लेफ्ट.
2: सर आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट?
1: मेरा लेफ्ट.
2: आप कौन से पोजीशन पे है सर?
3: फोन पे दिख नहीं रहे ना?
2: क्योंकि अगर आप मेरे सामने है तो आपका लेफ्ट मेरा राइट बनता है और मेरा राइट आपका लेफ्ट बनता है सर.
3: और अगर आप मेरे साथ में खड़े हैं
2: तो आपका लेफ्ट मेरा लेफ्ट.
0: आई एम श्योर दिस सीन रिमाइंड्स यू ऑफ सर्टेन समबडी इन योर वर्क प्लेस. हाँ, लेकिन अगर आपको फिल्म का नाम याद आ रहा है तो व्हाट्सएप इट टू मी 0543091062. अगर याद आ रहा है देन यू आर अ ह्यूज सुनील शेट्टी फैन. या कौन सी सुनील शेट्टी फिल्म में ये वाला मोमेंट था ऑफ हिम बीइंग द मोस्ट इरिटेटिंग एम्प्लॉई एवर? या 0543091062. इट इज सुनील शेट्टी इज बर्थडे एंड दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड.

0: Hollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugembo! Khush hua!
3: जी आज देखते हैं हमारी जापानीज अलका याग्निक हमारे लिए यहाँ पे क्या करती है. इट्स टाइम फॉर द कैरियोकी. हाँ जी,
4: इस प्यार को मेरी तरफ, इस प्यार से समझिए.
3: फिर से गाओ, फिर से गाओ.
4: प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा.

0: लूंगा। आई थिंक इतना बहुत है।
1: जितने गुस्से में रिनौशिता ने शुरू किया था ना, जिसे हो भी रहा होगा वो पीछे हट जाएगा।
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. This is The Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
5: 11th of August आज इज द लास्ट डे ऑफ दिस फेज ऑफ समर, यानी कि ये वाला जो हल्का था, अब ना जो फाइनल पीक समर का जो फेज है, दैट्स 11th टू 24th, वो आज से शुरू हो रहा है। राइट नाउ इट्स 42 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज, ह्यूमिडिटी एट 60-62%।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: This is The Big Mix with me, Sid. All the way till 5 p.m. right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. Bollywood ki taraf se sabse badi khabar in the past 24 hours, the fact that Anoop Soni is going to be replaced on Crime Patrol. Matlab, can you imagine anybody else say, Savdhan rahiye, satark rahiye. हाँ, और जैसे कोई ये कहेगा तो ऑटोमेटिकली यू विल थिंक ऑफ अनूप सोनी. नॉट गेस हुज रिप्लेसिंग अनूप सोनी एज द होस्ट ऑफ क्राइम पेट्रोल, द लेजेंडरी, द कल्ट क्लासिक क्राइम पेट्रोल. इट इज नन अदर देन अजय देवगन रिप्लेस करने वाले हैं अनूप सोनी को. एंड अपेरेंटली इज ऑलरेडी शॉट 15 एपिसोड शूट कर चुके हैं. 31st of August इज वेन द न्यू सीजन बिगिंस. तो तब जाकर पता चलेगा इफ दो शूज ऑफ अनूप सोनी आर टू बिग इवन फॉर द बिग माइटी अजय देवगन टू फिल. लेकिन आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, लेकिन जब मैंने सबसे पहली बार इस न्यूज को देखा, माई रिएक्शन वॉज,
2: ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे.
1: आपका रिएक्शन क्या है अजय देवगन एज द होस्ट ऑफ क्राइम पेट्रोल? यस और नो, हेड आउट टू आर इंस्टा पेज एंड टेक पार्ट इन आर पोल. आर इंस्टा हैंडल इज 106.2 बिग FM. दिस इज बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: क्लास मंडरा है
1: बड़ा,
0: फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टर्कर।
1: कम ऑन रिया,
0: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
1: मेरी
0: है।
1: भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
1: वाओ।
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
1: I'm not listening to
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
1: मंडरा,
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: Okay, I'm not with
0: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: Okay, that's it.
2: Big.
3: आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून 4:05।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: Fair to partly cloudy. That's what the NCM prediction is for today, the 11th of August. Kahin kahin par inland areas mein the temperature might reach 47 degrees Celsius. On an average, it is 43 degrees Celsius right now across the UAE. Humidity at 62%.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA, and Bahrain. Visit alras.me. Big

0: Big 106.2 पर दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड. एंड जब कोई फिल्म बॉलीवुड में नहीं चलती ना, तो वन यूजुअल थिंग दैट द मेकर्स ऑफ द फिल्म से कि यार हमारी फिल्म ना एक्चुअली विजनरी थी, इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, लोगों के समझ में नहीं आई हमारी फिल्म इसलिए इतनी चली नहीं. एक फिल्म दैट आई जेन्युइनली थिंक वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम एंड इसीलिए ज्यादा नहीं चली वॉज आज की हमारी बर्थडे फिल्म, यानी कि 11th of August फिल्म दैट सेलिब्रेट्स 20 years इज कभी अलविदा ना कहना, करण जौहर की फिल्म. एंड वॉज बेस्ड ऑन अनहैप्पी मैरिजेज, इनफिडेलिटी एंड इवन एट द टाइम दैट इट रिलीज ह्यूजली डिवाइसिव एट दिस पॉइंट. मतलब यू ईदर यू लव्ड इट और यू एब्सोल्युटली हेटेड इट. देयर वॉज नो ग्रेज व्हेन इट केम टू कभी अलविदा ना कहना. हियर्स वन ऑफ द रियली इंटेंस सीन्स फ्रॉम दैट मूवी.
1: क्योंकि तुमने मुझे दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया है. मैं हमेशा सोचती थी दर्द प्यार में दिया जाता है, पर ये सच नहीं. तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, तुम किसी से प्यार नहीं करती. नफरत है तुम्हें, नफरत है तुम्हें अपने आप से, अपनी जिंदगी से, अपनी नाकामयाबी से.
0: हाँ, मतलब ये इंटेंस मोमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गए थे इस फिल्म में, आई एल गिव यू दैट. बट इन हाइंडसाइट 20 साल के बाद ऐसा जरूर लगता है यार कि आई मीन दिस फिल्म वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. व्हाट डू यू थिंक? आई एम गोना पुट अप अ पोल अबाउट दिस ऑन आर इंस्टा 106.2 बिग एफएम. वहाँ पर जाइए, मुझे बचाइए, आपको मुझे बचाइए नहीं, मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि कैंक वॉज इट वे अहेड ऑफ इट्स टाइम और नॉट. दिस इज बिग 106.2 एंड वी आर द बीट ऑफ बॉलीवुड. इट इज नॉट जस्ट कभी अलविदा ना कहना, देर आर टू मोर शाहरुख खान फिल्म्स दैट रिलीज्ड एग्जैक्टली ऑन दिस डेट 11th of August. कौन सी ये दो फिल्में हैं? कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड.

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Big 106.2 पर दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड. एंड लास्ट टाइम एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि विच आर द अदर टू मूवीज अपार्ट फ्रॉम कभी अलविदा ना कहना, शाहरुख खान मूवीज जो कि 11th अगस्त के दिन रिलीज हुई थी आज के दिन. एंड इनफैक्ट इट्स अमेजिंग बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द 11th अगस्त, ये दो फिल्में शाहरुख खान की सेम डे पे रिलीज हुई in 1995, 11th August 1995, there were two Shah Rukh Khan movies that released on the same day. Aaj ki date mein, it's unimaginable, right? Ke koi actor would agree to do this. Matlab, itna carefully choose karte hain release dates. But there was a time, another thing that's unimaginable is, ke there was a time, ek time aisa bhi tha, jab Shah Rukh Khan was actually a struggling actor and he was just taking all the projects that he possibly could. So, which are the two films that released on the same day, 11th of August 1995? The first is ओ डार्लिंग ये है इंडिया, एनी मिलेनियल्स आउट देयर, 1995, स्टारिंग शाहरुख खान, दीपा साही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी. एंड देन द अदर फिल्म इज गुड्डू. फिल्म किसी को याद नहीं है लेकिन आई एम श्योर इफ यू आर अ मिलेनियल यू नो दिस सॉन्ग.
2: ठंडी में पसीना चले ना भूख ना प्यास लगे
3: यार, यही प्यार तो नहीं
1: मनीषा कुराला, शाहरुख खान, गुड्डू, रिलीज्ड ऑन दिस डेट 11th ऑगस्ट 1995. दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड. गुड आफ्टरनून.

0: Wow, your hair color looks stunning.
1: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
0: Yeah, right.
1: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
0: Really?
1: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
0: I'm buying it right now.
1: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
2: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत, डाबर शिलाजीत. Consult your doctor before taking medicine and pharmaceutical products.
3: Missed your morning buzz?
4: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.
3: Yes,
5: अमर प्रेम प्रेम अमर अमर गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है?
6: गुड मॉर्निंग सिद भाई, कैसे आप?
5: बिल्कुल बढ़िया यार. इंजीनियर अमर, कौन से वाले इंजीनियर हो आप?
6: मैंने पैकेजिंग किया है, टेक्नोलॉजी.
5: पैकेजिंग टेक्नोलॉजी भी इंजीनियरिंग होती है क्या? इज इट?
6: यस सर.
5: वेरी नाइस. चलो अमर, आज अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज दैट वन पॉजिटिव थॉट जो आप घर से जब निकले तो साथ लेकर निकले हो? इट कुड बी अ मीटिंग दैट यू एक्सपेक्टिंग, खाने में कुछ अमेजिंग है जो अभी भी महक रहा है आपकी गाड़ी में, तो व्हाट इज दैट वन पॉजिटिव थॉट दैट यू लेफ्ट होम विद दिस मॉर्निंग?
6: इट्स वेरी सिंपल, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन डू राइट नाउ.
5: क्या बात है भाई, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाटएवर यू कैन, क्या?
6: Right now,
5: that's a very good philosophy जो अमर ने हमें बताई. लेकिन you know क्या है ना अमर, के all of us millennials and I'm assuming you're also one because आपने सही जवाब दिया. जब भी हमको पॉजिटिव थॉट की जरूरत होती थी तो हम ये गाना सोचते थे.
7: ठंडी में पसीना चले ना, भूख ना प्यास लगे,
5: for all the right or wrong reasons ये गाना हमें cheer up कर ही देता था. फिल्म का नाम क्या है?
6: गुड्डू.
5: गुड्डू इज एब्सोल्युटली करेक्ट.
8: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.
5: Northbound traffic जमा होना शुरू हो गया है across all the arteries in the UAE. The usual E11 Sheikh Zayed Road पर Dubai Marina going towards Umm Sakeem area heading north and also going towards Trade Center roundabout. You'll find congestion building up. 311 पर भी heading north towards City Center Zaya from City Center Mirdif. And then there's just a bit of southbound traffic at 44. And this is as you get out of Russell Core Wildlife Sanctuary. In case you spot something, give me a call. 800-1062.
8: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग द टाइम राइट नाउ 5:07।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
3: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
2: अलरास बोले तो
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
2: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Chill.
5: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
6: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
9: 38 डिग्रीज लो जाएगा अराउंड 34 फिलहाल. ह्यूमिडिटी है 59% पर. द काउंट डाउन हैज बिगन ऑफिशियली. दिल को सुकून मिलता है कि 20 दिन और फिर गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी.
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, I'm Mansi. This is The Big Thrill. And the best way to go back home is gana ga ke, gunguna ke, mahal bana ke. It's time for the karaoke, the only platform for bathroom singers to showcase their talent. Awaaz aapki, audience meri. It's time for you to host your own concert.
1: Karaoke.
2: अगर गाड़ी में बैठे बैठे आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार मेरा सुर नहीं लगता है, सुर लगे ना लगे दिल लगना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेकअप हिट्स एवर. अगर 90s में आपने भी किसी से मोहब्बत की है तो कैसेट पे बार बार रिपीट पे ये गाना आपने भी सुना होगा.

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, यह है बिग थ्रिल मानसी एंड द स्टार ऑफ द शो। हम गाना गाते हैं, माहौल बनाते हैं विद द कैरियोकी, कैरियोकी सेशन राइट आपकी गाड़ी में। एंड जॉइनिंग अस नाउ इज निखिल। कैसा रहा मंगलवार?
2: एकदम बढ़िया मैडम।
1: क्या हुआ खास? द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू यू टुडे, प्लीज से इट्स मी।
2: मतलब जो जो यूजुअल होता है वही हो जाता, कुछ ऐसा कुछ।
1: यार तो झूठ ही बोल देते, मैंने हिंट भी दे दिया था कि प्लीज से इट्स मी। Oh my God, men, I tell you, फिलहाल निखिल आप गाना गाने का शौक रखते हैं?
2: गाना तो नहीं गाता हूँ, पर बाथरूम सिंगर हूँ मैं।
1: वेरी नाइस। तो मेरी ऑडियंस भगाओगे कि बढ़ाओगे?
2: अभी वही अभी अभी आप डिसाइड करो।
1: नहीं, मैं क्या डिसाइड करूँ सर, अगर आपने भगा दी तो वापस आप ही लेकर आओगे। फिलहाल गाना पहचान लिया है?
2: गाना पहचान।
1: चलो जी, निखिल की मधुर आवाज में
0: कारियोकी।
1: निखिल आपका ट्रैक है। हाँ जी,

0: था जीता था जिसके लिए उसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था।
1: उफ, दिल का दर्द
0: क्या लगता है और?
1: पूरा कानों तक आ गया है, मतलब एयरबैग ना खुल गए उन लोगों के गाड़ी में। ओह निखिल, गाना तो याद है लेकिन आपको, तो कोई थी ऐसी लड़की जिससे आप प्यार करते थे और उसकी याद में गाना सुनते थे?
0: मैं जिससे प्यार किया उसी से शादी किया मैंने।
1: हाँ तो मतलब फिर आप फील में नहीं आ पा रहे हो इस गाने की। ताशिक, किसी भी लड़की ने धोखा नहीं दिया निखिल तुम्हें?
0: धोखा नहीं, धोखा लड़के नहीं देते।
1: ये तो देखो, ये बहुत बढ़िया बात बोली, फिर से रिपीट करना।
0: सॉरी।
1: नहीं, फिर से एक बार प्लीज। के धोखा लड़के देते हैं, लड़कियां नहीं देती है। मैं तो ये चिल्लाती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। बट आपने तोड़ा है लड़कियों का दिल?
0: नहीं, मैंने तोड़ा किसी का दिल, मैंने जिससे प्यार किया उससे।
1: अभी तो आप बोल रहे थे मुझे कि अफेयर्स तो बहुत रहे हैं मेरे।
0: अफेयर्स थे बहुत सारे, मगर जिससे सच्चा प्यार किया उसके साथ, मतलब।
1: तो बाकियों से आप कौन सा प्यार कर रहे थे? झूठा प्यार ना, तो वो बेचारी गा रही होंगी आज आपकी मोहब्बत में, जीती थी जिसके लिए एक ऐसा निखिल था। बट निखिल, गाना बहुत मजेदार गाया आपने, सुर काफी बाहर गए थे, बट मजा बहुत आया। आपको आया कि नहीं आया? चलो जी, हैव अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर कैरियोकी की सेशन। वैसे निखिल की तरह अगर आप भी गाते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गिव मी अ कॉल 800-1062 पर।
2: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: And we are karaoke here. वैसे karaoke करने के लिए please WhatsApp call ना करें. ये रिश्तेदारों को भी हम समझाते हैं यहाँ पे चलता नहीं है. WhatsApp कर सकते हैं 0543091062 पर. Joining us, Vicky. Hi, good evening.
2: Good evening. How are you doing?
1: I am good. Vicky is a kind of karaoke king.
2: Yeah, you're right. मैं प्रिपरेशन करते रहता हूँ कि मेरे फेवरेट गाना कौन सा आएगा.
1: तो ये गाना आपका फेवरेट है?
2: अच्छा, बहुत ज्यादा.
1: क्यों, कौन थी वो लड़की जिसके लिए जीते थे?
2: ये स्कूल में
1: प्यार करती थी?
2: नहीं है. और वो हाँ, एक बचपन का था, उसको उसके भाई को मैंने साथ दिया, उसने उसको दिया और उसने मुझे फिर गाली दिया.
1: भाई ने नहीं पकड़ के जो है धुलाई की. छोटा भाई होगा.
2: अरे छोटा भाई, 2003 की बात है.
1: वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. तो पुरानी खिलाड़ी हैं और विकी जो है वो काफी अच्छा गाते हैं. एक दो बार ही ऑलरेडी सांग हियर, तो आई थिंक मजा आएगा विकी की आवाज में.
0: Karaoke.
1: चलो विकी, आपका ट्रैक है.

0: वाह
1: लड़की थी
0: यार,
1: जिसे मैं प्यार
0: दर्द तो है आपकी आवाज में। अब मुझे नहीं पता कि ये वो खत वाली लड़की के लिए है या फिर कई लड़कियों के लिए है, बट आवाज में
1: अरे
0: दर्द
1: नहीं,
0: काफी था।
1: नहीं है ऐसा, अभी कुछ नहीं है।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं ये देखो, ये गाना अभी देखो थोड़ी देर पहले निखिल ने गाया था, अब उसका कभी दिल नहीं टूटा, तो ये वाली फील नहीं आई जो आपके इस वर्जन ऑफ सॉन्ग में आई है। तो ज्यादा हंसने वाले लोग अक्सर जो है प्यार में धोखा भी खाते हैं। आई एम द परफेक्ट एग्जाम्पल, तो आपने भी खाया तो होगा ही।
1: नहीं, मैंने मुझे ऐसा कोई मतलब मोहब्बत नहीं मिली, मैंने ही वो किया है,
0: वही
1: बट
0: वही तो
1: उसके
0: मैंने
1: रिवॉर्ड में
0: बोला
1: मुझे कुछ नहीं
0: कि
1: मिला।
0: बस
1: सो दैट्स द रीजन आई एम लाफिंग ऑल द टाइम,
0: दैट्स व्हाट आई सेड,
1: मतलब
0: पीपल हु
1: ऐसे
0: लाफ अ
1: कुछ।
0: लॉट आर टोटली हार्ट ब्रोकन। बट विकी, यू सैंग द सॉन्ग ब्यूटिफुली एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच, एंड आई होप कोई मिले ऐसे जो इस दर्द को कम कर पाए। ठीक है, चलो बाय
1: थैंक यू सो मच, थैंक्स, बाय,
0: बाय।
1: टेक केयर।

0: हाँ जी
1: बेटा था जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun.
1: Come on.
0: Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
2: Good evening, ये है Big Thrill, Mansi, and I'm sure everyone is thrilled क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी मिलने वाली है, लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, but we have a longer weekend waiting for us, especially during the national day break. अब जिंदगी में कोई प्लानिंग होना हो, हम छुट्टियों की प्लानिंग बहुत सॉलिड करते हैं. So I'll give you all the details. Also, this hour of the show, we play this fun game. It's called the 5-second rule. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी होती हैं फटाफट 5 सेकंड के अंदर. आई नो इट साउंड्स इजी, बट ये गेम इतना आसान है नहीं. अगर आपने ट्राई करना है, 800-1062 is the number to dial.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:07।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, I'm Mansi. We're playing the 5-second rule. Filhal, jinhe sari duniya ki ladkiyan dhoond rahi hain, the greenest of the green flag, Aditya is here. Hi, good evening.
3: Hi, Mansi, how are you?
2: I am good. You know this, right? Every girl is looking for Aditya.
3: I'm not sure. Maine to ye pehli baar suna hai, but thank you for the wonderful introduction.
2: So the joke comes from Jab We Met. Aditya Shahid Kapoor, the good guy, and Anshuman is the bad guy.
3: Yes.
2: So yeah, ladkiyon ko lagta hai ki Aditya jo hai, agar zindagi mein aayega to bas zindagi set ho jayegi. Aap kisi ladki ki zindagi mein hai ki free hai aajkal?
3: Hum pichle 14 saal se ek hi ladki ke saath mein hai, usse shaadi bhi ho chuki hai. So this Aditya has been taken.
2: Yeah, time hi kharab chal raha hai ladkiyon, single ladkiyan single hi rahengi, sare Aditya jo hai they are taken. Aditya, what do you do?
3: For a hospitality company, I work as an HR.
2: Very, very nice, very nice. Enjoying the job or active on LinkedIn?
3: Loving the job and active on LinkedIn as well.
2: Perfect. Filhal, Aditya will play the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. 3 cheeze batani hai, 5 seconds ke andar. All the best.
1: 5-second rule.
4: Oh, yeah.
2: Quickly tell me 3 things that you do before you go to bed.
3: Brush my teeth, watch TV, and put my dog to sleep.
2: Put your dog to sleep?
3: Yes.
2: So cute, so
3: cute. I've got 2 dogs at home.
2: So
3: I've got
2: cute.
3: 2 dogs at home, so I have to cuddle them and tuck them in.
2: So cute, यार ये वाला आदित्य मुझे क्यों नहीं मिला? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं. 3 things that you only find at a beach.
3: Sand, water, and umbrellas.
2: Very nice. 3 ऐसी चीजें जो येलो कलर की होती हैं आदित्य, आप उसे खा भी सकते हैं. एडिबल थिंग्स दैट आर येलो इन कलर.
3: लेमन टार्ट
2: कुछ भी. लेमन टार्ट टाइप कलर्स. 3 आमिर खान मूवीज. वाह, नॉट बैड एट ऑल. 3 थिंग्स दैट यू शुड नेवर एवर डू ऑन अ फर्स्ट डेट आदित्य. यार ये 14 साल पहले माहौल अच्छा था, अभी काफी खराब हो चुका है.
3: अब क्या करें?
2: आई नो,
3: लिटिल ओल्ड स्कूल.
2: आई स्वेयर, आई मीन वी ऑल मिस ओल्ड स्कूल. यहाँ पे तो एक चाय और समोसा खिला देते हैं और फिर कहते हैं गोल्ड डिगर है लड़की. मूविंग ऑन. 3 थिंग्स दैट यू एब्सोल्युटली हेट अबाउट योर कॉलीग्स. तीन ऐसे फालतू एक्सक्यूजेस जो आपके एम्प्लॉइज आपको देते हैं छुट्टी लेने के लिए.
3: मेरा मेट्रो छूट गया, मेरा मेट्रो छूट गया एंड मेरे को दोबारा से इन्फ्लुएंजा हो गया.
2: Not bad at all, Aditya. For the first time, you aced this game. Most of your answers were bang on within 5 seconds. I hope you had fun.
3: Absolutely, I enjoyed myself.
2: अच्छा, asking for a friend, ऐसा कौन सा reason है जो HR को last minute देंगे तो वो छुट्टी 100% दे देगा?
3: Believable is not well. इस मौसम में तो definitely influenza.
2: ठीक है, और बाकी मौसम में क्या बोलता है ये मैं आदित्य से बाद में पूछूंगी. चलो, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. थैंक यू सो मच, बाय आदित्य. ये 5 सेकंड रूल आपने खेलना है, एक ही रूल है, कॉल करना है 800-1062 पर.

0: 92.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
4: Insurancemarket.ae. The worst part of a small accident isn't the dent, it's what can happen after. But with us, you are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae.
0: The Big Thrill on Big 106.2. Brought to you by Dabur Shilajit. आपकी जीत डाबर शिला जीत। Missed your morning buzz?
5: ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
0: Yes,
6: अमर प्रेम प्रेम अमर अमर गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है?
7: गुड मॉर्निंग सिद्ध भाई, कैसे आप?
6: बिल्कुल बढ़िया यार। इंजीनियर अमर, कौन से वाले इंजीनियर हो आप?
7: मैंने पैकेजिंग किया है, टेक्नोलॉजी।
6: पैकेजिंग टेक्नोलॉजी भी इंजीनियरिंग होती है क्या? इज इट?
7: यस सर।
6: वेरी नाइस सर। चलो अमर, आज अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज दैट वन पॉजिटिव थॉट जो आप घर से जब निकले तो साथ लेकर निकले हो? इट कुड बी अ मीटिंग दैट यू एक्सपेक्टिंग, खाने में कुछ अमेजिंग है जो अभी भी महक रहा है आपकी गाड़ी में, तो व्हाट इज दैट वन पॉजिटिव थॉट दैट यू हैव लेफ्ट होम विद दिस मॉर्निंग?
7: इट्स वेरी सिंपल, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन डू राइट नाउ।
6: क्या बात है भाई, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाटएवर यू कैन, क्या?
7: Right now,
6: that's a very good philosophy जो अमर ने हमें बताई। लेकिन you know क्या है ना अमर, के all of us millennials and I'm assuming you're also one because आपने सही जवाब दिया, जब भी हमको positive thought की जरूरत होती थी तो हम ये गाना सोचते थे।
8: ठंडी में पसीना चले ना भूख ना प्यास लगे,
6: for all the right or wrong reasons ये गाना हमें cheer up कर ही देता था। तो बताओ फिल्म का नाम क्या है?
7: गुड्डू
6: is absolutely correct।
0: Energy and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
11: 38 degrees, लो जाएगा around 34. फिलहाल humidity है 53% पर।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
2: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
3: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, यह है Big Thrill Mansi. And अगर आज के modern lifestyle की हम बात करें तो weak feel करना, स्ट्रेंथ ना होना, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन. स्ट्रेस है, फास्ट फूड है, इतनी फास्ट लाइफस्टाइल है, हम हमेशा भागते रहते हैं. एंड ऑल ऑफ दिस कैन मेक अस ऑल फील वेरी वेरी लो. बट आपने टेंशन नहीं लेनी है, आई हैव गॉट द सॉल्यूशन. जस्ट हैव डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स. दे हेल्प इंक्रीज योर मसल स्ट्रेंथ, योर स्टेमिना एंड योर पावर. शेर की तरह बनिए मजबूत. दिन की शुरुआत कीजिए विद डाबर शिलाजीत. दीज आर 100% नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स दैट मेक यू फील स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट. आपकी जीत विद डाबर शिलाजीत. Definitely consult your doctor before taking medicines and pharmaceutical products.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is the Big Thrill. I'm Mansi. We're playing the 5 second rule. Joining us is Ritesh. Hi, Ritesh.
2: Hi. How's it going?
1: All good, Ritesh. Let me guess. MBA student? Now in marketing?
2: Finance.
1: Blue eyes?
2: Yes.
1: 6 feet?
2: No. No.
1: You sound someone, you know, jo four course meal pe aapko lekar jayega for the first date.
2: That is true,
1: true, right?
2: Yes.
1: Yeah. You are a fancy guy, aren't you?
2: I'd like to be, yes.
1: Yeah. So, Ritesh, how's it? How was your Tuesday?
2: Busy. I'm just heading back from work.
1: Very nice, very nice. So, aapke finances bhi achhe ho rahe honge, finance karte karte.
2: Well,
1: now. Ritesh, we'll play this fun game. It's called the 5 second rule. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. Teen cheeze batani hai. 5 second ke andar. All the best.
0: 5 second rule.
3: Oh yeah.
1: Three things that you notice in a girl.
2: The hair, face, and her dress.
1: Oh, nice. So, you आपको लंबे बाल वाली लड़कियाँ अच्छी लगती हैं कि छोटे बाल वाली? Asking for myself.
2: लंबे
1: तो चलो ठीक है, फिर मैं अच्छी लगूंगी. आगे बढ़ते हैं. आज सुनील शेट्टी का बर्थडे है. 3 सुनील शेट्टी की मूवीज.
2: मैं हूं ना.
1: ओके, टाइम फिनिश. फटाफट. यू हैव टू बी क्विक. 3 थिंग्स दैट आर ग्रीन इन कलर एंड यू कैन ईट.
2: एप्पल
1: एंड ब्रोकली, एवोकाडो. 5 सेकंड हो गए थे. स्पिनच, केल, बिकॉज यूर अ फैंसी गाय. केल. मूविंग ऑन क्विकली, नेम 3 बॉलीवुड मूवीज जिनके टाइटल में दिल आता है.
2: दिल धड़कने दो.
1: और
2: ऐ दिल है मुश्किल.
1: ओके. थ्री बॉलीवुड एक्टर्स जिनका नाम शुरू होता है विद द लेटर वी.
2: विवेक ओबेरॉय.
1: ओके, नॉट बैड.
2: विनय कपूर.
1: 5 सेकंड. 5 सेकंड आप शुरू ही 4 सेकंड के बाद होते हैं. रितेश, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक.
0: 5 सेकंड रोल.
3: ओह यस.
1: सो गेम तो आपने बिल्कुल अच्छा नहीं खेला, बट जस्ट आस्किंग फॉर पीपल आउट देयर, गाय इन फाइनेंस, नॉट 6 फीट बट एटलीस्ट 5'11"?
2: 5'10.
1: 5'10. सिंगल? नॉट सिंगल?
2: No, not single.
1: अरे तो फिर इतनी लंबी बात करने की जरूरत ही नहीं थी यार. What is this, Ritesh? Chalo, you have a great drive back home. It was lovely talking to you.
2: Likewise.
1: Bye, Ritesh. Bye.
2: Bye-bye.
1: फिलहाल अगर आपने भी खेलना है 5 सेकंड रूल, एक ही रूल है. Give me a call 800-1-0625.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill and Mansi. And a question. Ek टेकी जो है वो वायरल हो रहा है बिकॉज उन्होंने बैंगलोर में 4.5 लाख इंडियन रुपीज का पे कट लिया है टू परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम. सो इफ गिवन अ चांस, वुड यू टेक अ सैलरी और अ पे कट टू परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम? वी आर डिस्कसिंग दिस. देयर इज ऑल्सो पोल अप ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज 106.2 बिग एफएम. गो एंड चेक इट आउट. ऑल्सो वी सेलिब्रेटिंग अन्ना सुनील शेट्टीज बर्थडे दिस आवर विद सम फैंटास्टिक म्यूजिक राइट हियर ऑन द बिग थ्रिल. मैं हूं मानसी.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:10।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Celebrating Sunil Shetty, I have to say, one of the hottest looking grandfathers that we have in the industry. It's a tough competition between Anil Kapoor and Sunil Shetty. He is turned 65 today and trust me, he looks absolutely fab and fit. Last time humne ne Welcome to the Jungle mein dekha tha, is saal Hera Phiri 3 mein bhi ye dikhai denge. And when I talk about Sunil Shetty, there's so many movies, so many iconic roles that I think of. Gopi Kishan hua, one of my all-time favorites. Mohara mein he was Kamal, Border mein, Hera Phiri of course. There's another Priyadarshan movie, Ye Tera Ghar Ye Mera Ghar. Bahut hi underrated movie hai, but I loved Sunil Shetty in the movie. बट दुनिया सुनील शेट्टी को जब भी याद करती है इसी मूवी से करती है. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स दैट ही प्लेड ऑन स्क्रीन एंड इट स्टेड विद अस इवन आफ्टर डेकेड्स. ऐसा कोई मिमिक्री आर्टिस्ट है नहीं जो इस डायलॉग को या इस मूवी को मिमिक ना करे.
3: मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपया है. 500 करोड़, जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा तुम सोच भी नहीं सकती. मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था.
2: मैनिफेस्टिंग 50 से 500 करोड़ का सफर, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. आई एम श्योर यू हैव गेस्ड द मूवी. And if you have, then give me a call, 800-1062. We're celebrating Sunil Shetty this evening, right here on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: That was the fast track song of the hour. In fact, we've got two very big releases in the month of August. 14th ko Awar Apan 2, of course. And one of the most anticipated releases of this year has to be Toxic, a Fairy Tale for Grown-Ups, jiska gana aapne abhi suna. This is the Hindi version movie, Hindi, Kannada, Telugu, English and Malayalam mein saath release hogi on the 26th. Filhal today also, we're celebrating Sunil Shetty ka birthday. So he's known for some brilliant work, but I think if I talk about one iconic Sunil Shetty character, it has to be this one.
2: Dev, tum galat samajh rahe ho. Main apne baap ka ghar nahi, tumhe chhodne aayi hu.
3: Phir se mazak hai?
2: Dev, main mazak nahi kar rahi hu. Maine papa ki baat maan li hai. अब मैं वही शादी करूंगी जहां वो कहेंगे.
1: इनफैक्ट रिसेंटली एक रियलिटी शो में शिल्पा शेट्टी एंड सुनील शेट्टी ने ये रिक्रिएट भी किया था. व्हाट अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट सीन. अगर आपको मूवी याद आ गई है, इट्स सुनील शेट्टीज बर्थडे, डेफिनेटली लेट मी नो 800-1062 पर. ये इतना टफ है नहीं, तो ऑल द ओजी सुनील शेट्टी फैंस आपको 100% ये मूवी याद होगी. फिलहाल कमिंग अप ब्रेक के उस पार.
4: जिन्नी सोनी लगदी है मनु किसे होर ना लगे लगे.
1: आदित्य रिखारी की आवाज़ फ्रॉम पति पत्नी और वो दो.
0: बिग 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: फिलहाल दिन चढ़े दिन ढले, आपको सिर्फ थकान रहती है, ताकत की कमी फील होती है, यू फील वेरी वेरी लेथार्जिक, वेरी वीक, देन आई गॉट द परफेक्ट सॉल्यूशन. आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्ट्रेंथ ना होना, कमजोर फील करना इज वेरी वेरी कॉमन स्ट्रेस है. फास्ट फूड है, बहुत ही फास्ट लाइफस्टाइल है, बट यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट हैव डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स. दे हेल्प इंक्रीज योर मसल स्ट्रेंथ, योर स्टैमिना एंड योर पावर. अगर आप शेर की तरह मजबूत बनना चाहते हैं, देन अपने दिन की शुरुआत कीजिए डाबर शिलाजीत के साथ. 100% नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं दैट विल मेक यू फील स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट. आपकी जीत with Dabur Shilajit. Do consult your doctor before taking your medicines or any pharmaceutical products.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Hello.
1: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
2: हे hey.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे

0: 106.2. The beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
4: 38 डिग्री स्टिल लो जाएगा अराउंड 36. फिलहाल ह्यूमिडिटी है 65% पर.
3: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: Your holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: अब ये वाले लॉन्ग वीकेंड में लोगों ने अज्यूम करा कि मंडे की छुट्टी होगी और उस हिसाब से छुट्टियां ले ली. लास्ट मोमेंट पे आप डेट भी नहीं चेंज कर सकते हो, टिकट्स बुक्ड है. बट विद एमिरेट्स दिस इज पॉसिबल इफ यू प्लानिंग योर नेक्स्ट ट्रिप. एमिरेट्स जस्ट मेड चेंजिंग योर ट्रैवल प्लान्स कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री. इफ यू फ्लाइंग इन टू दुबई तो एमिरेट्स इज नाउ ऑफरिंग अनलिमिटेड फ्री डेट चेंजेस अक्रॉस नियरली ऑल द इकोनॉमी एंड बिजनेस क्लास टिकट्स. प्लस इफ यू फ्लाइंग एनीवेयर across their global network, you can get one free date change on all cabin classes. Change fees jo hai wo waive ho chuki hai and you can hold your fare also for free up to 24 hours while you finalize your dates. So great news for people jo apne plans change karte hain and they want to change dates of their travel. So this is great news coming in. One place that I really want to travel this year is go to the real OG Musafir Cafe. I know it sounds very very filmy but jab se maine ye show dekha ek to mujhe waise bhi pahadon se bahut pyar hai, isliye mujhe Imtiaz Ali se bhi pyar hai. And jaise ye cafe aaya meri nazron pe and maine Instagram pe search kara to aisa legit cafe hai India mein. So this is my plan. मैं कहती हूँ ना कि दुनिया जो है शो देखने के बाद अपनी सुधा, अपनी प्रीति, अपने चंदर को मैनिफेस्ट कर रही है. आई एम जेन्युइनली मैनिफेस्टिंग अ मार्क अंकल जो अपना मसूरी वाला होम स्टे मेरे नाम कर जाएं.

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: I'm sure you're very excited for the long weekend that we're expecting later this month. But saal bhar hum intezaar karte hain National Day holiday ka, which is Eid al-Etihad. And this year we might get 4 ya 5 din ki chutti. Mark your calendars. This time December 2nd is a Wednesday. Then December 3 Thursday ki chutti. Combined with the standard Saturday and Sunday weekend, aapko 4 din ka holiday break to milega hi. But here's your pro trip. अगर आप एक सिंगल एनुअल लीव डे यूज करते हैं फॉर फ्राइडे विच इज डिसम्बर 4th, देन यू इंस्टेंटली अनलॉक अ 5 दिन का लॉन्ग डे वीकेंड. अब आई थिंक एज कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज एक चीज जो हम बहुत बखूबी कैलकुलेट करते हैं, क्लबिंग इन आर एनुअल लीव्स विद द लॉन्ग वीकेंड्स. एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू एंजॉय अ ग्रेट ब्रेक. एंड अगर ऑफिशियली फ्राइडे की छुट्टी मिल ही जाती है, 3 दिन का ब्रेक अनाउंस करती है फॉर द ईद अल एतिहाद द गवर्नमेंट, देन आपकी एक भी एनुअल लीव जो है वो नहीं जाएगी और आप 5 दिन का ब्रेक जो है वो एंजॉय कर सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग लॉन्ग वीकेंड दैट विल डायरेक्टली गेट इन डिसम्बर. एंड ऑनेस्टली मुझे लगा था 2025 में कि यार ये साल बहुत भारी है, आई कांट वेट फॉर 2026. बट जितना सरप्राइज 2026 ने हम सबको किया है, 2027 का इंतजार है. अब प्लीज डोंट बी लाइक 25 एंड 26. 2027 आई हैव हाई होप्स.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: And आज है सुनील शेट्टी का बर्थडे. मैंने एक आइकॉनिक डायलॉग प्ले किया था. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू गॉट इट राइट. द मूवी इज धड़कन. देव और अंजलि, आई थिंक ही इज डन सम ब्रिलियंट वर्क. बट अगर फर्स्ट इंस्टेंस में कुछ याद करना हो कि यू नो नेम थ्री मूवीज दैट यू लव अबाउट सुनील शेट्टी, थ्री आइकॉनिक कैरेक्टर्स ऑफ सुनील शेट्टी, तो देव का कैरेक्टर धड़कन का नाम आता ही है. वैसे अगर आप सुनील शेट्टी के बहुत बड़े दीवाने हैं तो एक बहुत कमाल क्विज है हमारे इंस्टाग्राम पेज पर. यू हैव टू गो एंड चेक आउट आवर स्टोरीज 106.2 बिग एफएम. इट इज टू ट्रूथ्स एंड वन लाई. तो इन तीनों में से झूठ क्या है ये इंस्टाग्राम पे बताना है. नंबर वन, Sunil Shetty holds a black belt. He's into martial arts. Number two, he was originally offered the role of Bhuvan for the movie Lagaan. And number three, he is an avid sports enthusiast and he's been the captain of the team Mumbai Heroes. So whatever you think is false, go and vote. Comment on our Insta page, which is 106.2 Big FM. Filhal, coming up, break your spar. Diljeet ke vaaz.
2: हीरे कुफर करे अख ना खड़े बॉडी संग मर मर पहुंच तो परे कादा कटे वैर कर दिल ना पले.
3: मेरे बॉयफ्रेंड से भूलू भूलू करेगी तो धोपेंगी ना उसको.
0: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
4: Same street, same shop, same hours. How is your shop busier than mine?
5: Because my shop doesn't close at 9. It's online.
4: Online? That takes months.
5: Not at all. I just picked a package. Now orders come in every day. Raspberry IT Services puts your business online. Pick a website package, we handle the rest. Starting from just 999 dirhams a year. Call or WhatsApp on 050-8323-481.
6: Namaste.
7: Hola.
6: Assalamualaikum.
8: Bonjour.
9: Ni hao.
8: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
10: InsuresMarket.ae. We insure the cat. We also insure the yacht the cat is sitting on. Pet, yacht, car, health, home, and more. Call 800 Alfred 24/7. InsuresMarket.ae.
11: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
12: नहीं, ये तो मुफ्त है.
11: गुड, चलो फोन लगाओ.
0: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
13: Mixing in the house.

0: लव लव लव दिस वन. इनफैक्ट अगर आप भी पंजाबी समझते हैं देन ठेठ पंजाबी में एक कुफर का मतलब होता है झूठ, मतलब कोरा कुफर बंदा है, बहुत झूठ बोलता है. बट यहाँ पे बड़े शायराना अंदाज में दिलजीत ने कहा है कि ये बस माइंड गेम्स खेलती है, हीर कुफर करे मतलब मेरे साथ माइंड गेम्स खेलती है, चलाकी करती है.
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: देखो प्यार से पोएटिक अंदाज में बोला जाए तो कुफर जैसा वर्ड भी कितना खूबसूरत लगता है. इसी बात पे टाइम फॉर मी नाउ टू से बाय बाय. आई विल नाउ सी यू टुमारो 5 to 9 इज व्हेन आई कीप यू कंपनी हियर. बट डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स 106.2 बिग एफएम इट इज. यू कैन से हाय टू मी, आई एम मानसी टॉकिंग. आई विल बी टॉकिंग टू यू टुमारो, लीविंग यू विद सम फैंटास्टिक फैंटास्टिक म्यूजिक एंड इसके बाद विद अ बिग चिल, सम वेरी चिल लॉन्ग ड्राइव काइंड ऑफ प्लेलिस्ट. सो यू स्टे राइट हियर, आई विल सी यू टुमारो, leaving you with...

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। द बिग जेल brought to you by insurancemarket.ae for the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: और प्रियंका चोपड़ा.